जी बेशक जो बार बार जा रहे हैं वो जाते रहे और जो जाना चाह रहे हैं जो तड़प रहे हैं या अल्लाह कुल्लू मोमिनीन को उस जगह की सआदत कब नसीब फरमा उनके कदम जल्द से जल्द वहाँ पहुँचा दे ये हमारी दुआ है इंशाल्लाह जो जाना चाहते हैं आप उम्मीद रखें और अल्लाह पर भरोसा रखें अगला कलाम है शगुफ्ता इमरान की आवाज़ में मेरे मोहम्मद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे है

बेशक जब आंखें उस सुनहरी जालियों पे पड़ते हैं तो दिल रो पड़ता है और खुशी से हम सलाम भेजते हैं हमारे आँखा पे और दुरूद भेजते हैं। तो अगला कलाम है नेहा नाज की आवाज़ में, अगल मुझको मिल जाए राहे मदीना।

किसी ने सच ही कहा है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाज़ा है। अगर आपके माँ बाप है उन्हें वक्त दें, उन्हें सराहें, और जिनके माँ बाप नहीं अल्लाह ताला मरहूमों को सबसे ऊंचा दर्जा दे जन्नत का, उनकी मगफिरत करें। अगला कलाम है कादरी आस्ताना, सलामत रहें।